में बहरिया के नाम से मनाया जाने लगा। 27 सितंबर का दिन सिर्फ माजी की याद ताज़ा करने के हवाले से ही नहीं बल्कि अपने अजदाद के बहरी विरसे को जिंदा रखने के हवाले से भी इंतहाई अहमियत का हामिल दिन है। ये इन फतूहात का नतीजा था कि मशरकी बहरा रूम तुर्क बहरिया के लिए सुकड़ कर एक झील की शक्ल इख्तियार कर गया। लेकिन दूसरी तरफ जजीरा कब्रस का 1489 से उस्मानियों की रकीब गैर मुल्की रियासत वीनस की हुक्मदारी में होना जंगी हिकमत अमली के एतबार से बहुत बड़ा खतरा तश्कील दे रहा था। वीनस बहरी कजाकों की हौसला अफजाई करता था और ये कजाक उस्मानियों के तजारती माल से लदे बहरी जहाजों को लूट लेते और हाजियों के काफिलों पर हमले करते रहते थे। यही वो असबाब थे जिन्होंने मार्का कब्रस को उस्मानियों के लिए एक मशहूरी बना दिया था। बहरा रूम में उस्मानियों की कतई हुक्मरानी के लिए जजीरे की फतेह जरूरी थी। प्यारे सामीन, इस किस्त में हमने न सिर्फ एक फतेह का बल्कि एक अहम तारीखी मोड़ का भी मुशाहदा किया है, लेकिन ये हमारे सफर की महज शुरुआत है। अगली सियाहत में हम देखेंगे कि इस जंगी चाल ने किस तरह पूरे मशरक बहरा रूम के तवाजुन को तहबाला किया और नक्शों को एक नई शक्ल अता की। उस वक्त तक अपने मेज़बान मिसबा शाहिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

0: हैं, जबकि कीफ ने 24 रूसी फौजियों की लाशें लौटाई हैं। यूक्रेन के जंगी कैदियों के मामला से मुतलक राबता मरकज ने बाद में तबादले की तस्दीक की। उन्होंने टेलीग्राम पर जारी करता एक बयान में कहा कि 261 लाशें मुल्क वापस लाई गई हैं जो रूसी हुकाम के मुताबिक यूक्रेनी फौजियों से ताल्लुक रखती हैं। बयान में मजीद कहा गया, हम लाशों की वापसी के अमल को सहल बनाने, इसमें ताउन फ्राहम करने पर आर्मी कमेटी प्राय सलीब आमिर का तहदीद से शुक्रिया अदा करते हैं। रूस यूक्रेन के दरमियान इस मामले पर आखिरी तबादला 16 जुलाई को हुआ था, जिसमें मास्को ने यूक्रेन को 501 लाशों और कीव ने रूस को 31 लाशें वापस की थीं।
1: मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में वाकई एक शॉपिंग मॉल में होने वाले धमाके में 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। न्यू काहिरा इलाके के अराबेला प्लाजा नामी शॉपिंग मॉल की दाखिली मंजिल पर वाकई तहाइफ और खिलौना की दुकान में हीलियम गैस के सिलेंडर के फटने से आग भड़क उठी। इस वाकये में 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए। मिस्री वजारत दाखिला के बयान में कहा गया है कि यह धमाका अराबेला प्लाजा शॉपिंग मॉल में हुआ और वाकये के बाद सामने लगने वाली कम सतह की आग को शहरी दिफाई दस्तों ने बुझा दिया। बताया गया है कि धमाके के बाईस आसपास की बाज़ दुकानों के शीशे टूट गए। मिस्री अटॉर्नी जनरल का कहना है कि धमाका होने वाली दुकान के मालिक को हिरासत में लेने की हिदायत दी गई है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में धमाका एक गैस सिलेंडर से होने का तायुन हुआ है और वाकई की वजह जानने के लिए माहिर टीमें तैनात कर दी गई हैं।
0: नेपाल के एक अहला अहदेदार ने अनातोलिया एजेंसी को बताया, मुल्क के मरपी सिला रोपला के एक दूर दराज गाँव थवांग में मिट्टी का तोदा गिरने से कई घर बह गए, जिसके नतीजे में कम अज कम 5 अफराद हलाक और 8 लापता हो गए। बुध के रोज मकामी वक्त के मुताबिक रात लगभग 8 बजे आने वाली लैंड स्लाइडिंग ने पहाड़ी दलवानों पर कायम 11 घरों और गाय भैंसों के बाड़ों को अपने साथ बहाकर तबाह कर दिया। इमदादी टीमें मुतासर इलाकों तक पहुंचने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। मुसल्ला पुलिस फोर्स नेपाल पुलिस के बचाव दस्तों ने लापता अफराद का सुराग लगाने के लिए कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। नेपाल का पसमानदा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अफाद से निपटने के लिए नाकाफी तैयारियां जून में शुरू होकर सितंबर तक जारी रहने वाले मानसून के मौसम में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का मोर्चा बनती हैं।
1: मकामी मीडिया ने जुम्मे को इतला दी है कि मशरकी जापान में मूसलाधार बारिशें के जिनके नतीजे में शदीद सैलाब, ज़मीन के तौदे गिरने और आमदोरफ्त में वसी पैमाने पर खलल पैदा हुआ, कम अज़ कम 6 अफराद हलाक हो गए। क्योडो न्यूज़ के मुताबिक टोक्यो गरीब चीबा सूबे के एक तिहाई से जायद बल्दियात के लिए जापान के मौसमियाती इदारे ने बुलंद तरीन दर्जे 5 के साथ मूसलाधार बारिशों का इंतबाह दिया और हुकाम ने रिहायशियों से अपनी हिफाजत के लिए फौरी इकदाम करने की अपील की। चेबा भर में शहरों पर पानी खड़ा होने की रिपोर्टें मौसूल हुई, जिसकी वजह से गाड़ियां फंस गईं और ट्रैफिक जाम हुआ, जबकि कई बल्दियात को लर्जिश अराजी का इंतबाह दिया गया। फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक परचीबा और इबारा सूबों में 4 लाख से ज्यादा अफराद के लिए इनखला के अहकाम जारी किए गए। जुम्मे की सुबह तक चीबा में तकरीबन 1,02,600 अफराद अब भी इनखला के अहकाम के तहत हैं। हुकाम ने चीबा में 6 हलाकतों की तस्दीक की, जिनमें वो अफराद शामिल हैं जो सैलाबी रेले की जद में आ गए। ट्रेन और बस सर्विसेज मुतासिर होने के बाद तकरीबन 7,000 अफराद नरीता एयरपोर्ट पर रात गुजारने पर मजबूर हुए। चीबा के चुआवार्डो में जुमेरात की रात 1 घंटे में 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जो कि खत्ते में तकरीबन पूरे अगस्त की औसत बारिश के बराबर है।
0: बरतानी साल के गर्म 3 दिनों में आग के शुरू से नवाचार दर्जा हरारत 38.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के साथ मुल्क भर में बिलखसूस वेस्ट मिडलैंड्स के इलाके में यकबाद तिगरे कई मकाम पर होलनाक आग भड़क उठी। स्टोरब्रिज गोल्फ कोर्स के करीब लगने झाड़ियों की शदीद आग घरों तक फैल गई, जिसके नतीजे में 6 घरों को नुकसान पहुंचा। दूसरे बर्मिंगम के घर में आग लगने से खातून की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। शोलों धुओं के बायस इलाके में ट्रेन की आमदरफ्त रोक दी गई है, बिजली की फ्राहमी मुअत्तल है। M6 मोटरवे पर धुएं की वजह से गाड़ियों की तवील कतारें लग गई और ट्रैफिक में 2.5 घंटे तक तखीर रिकॉर्ड की गई। जिन इलाकों से केयर होम्स और रहायशी बस्तियों को खाली कराया गया है, वहाँ स्टोर ब्रिज टाउन हॉल को बेघर होने शहरों के लिए पनाहगाह में तब्दील कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज 40 मुख्तलिफ मकाम पर दर्ज हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज कर गया था।
1: और चीनी बरकी ट्रकों की दूसरी एशियाई ममालिक को बरामदात में तेजी आ गई है, जो अंदरून मुल्क फरोख्त में इजाफे के साथ मिलकर इस खत्े की बरकी कारी को तेज कर रही है। इसकी एक वजह अमरीका की ईरान मुखालिफ जंग के नतीजे में ईंधन की कीमतों में इजाफा है। हल्की गाड़ियों से लेकर ट्रैक्टर ट्रेलरों तक चीन की तेज रफ्तार बरकी ट्रकों के रुझान ने दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट को इस तनाज़े के असरा से जुज़वी तौर पर महफूज रखा है। अब दूसरे ममालिक भी तेज़ी से इसको अपनाने के दर पे हैं। 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران مخالف جنگ شروع کرنے

के 4 माह बाद चीन के बड़े बल्क की ट्रकों की बरामदात गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 2 गुना से भी बढ़कर 16,823 गाड़ियों तक पहुंच गई है। जुनूब और जुनूब मशरकी एशिया, खास तौर पर मशरक़ वस्ती पर तेल पर इन्हिसार करते हैं और खलीज हुरमुस की बंदिश ने डीजल की कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा किया है, जिसने दुनिया के सबसे बड़े बर्की ट्रक साज चीन के लिए एक मौका पैदा कर दिया। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस डॉट कॉम के मुताबिक जंग के आगाज़ से श्रीलंका में डीजल कीमतें 48% बढ़ चुकी हैं और फिलिपाइन में 57%, जबकि सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक चीन में यह इजाफा 15% तक है। सैनिक इंटरनेशनल मार्केटिंग के नायब सदर जियाओ तिंग यू ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी को बताया कि जंग ने इन नई मंडियों के दरवाजे खोल दिए हैं। याद रहे कि सानी दुनिया का सबसे बड़ा भारी बर्की ट्रक बनाने वाला इदारा है। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुई।